दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठी ए दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपु दुई दंपति। सलाह।